0: वाया नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाया नेट अब सब कनेक्टेड
1: हमी जन्मजात नहीं शिकारियों शिकारी पूरे डायलेक्ट मलाई चाहिए
2: बीएफएक्स सिनेमाज कुराही दस नारायणपुर सौरी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम नाम

0: कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर पैक क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

चिल पाहेलो सल्थ मायन तिम्रो चिल पाहेलो सल्थ मायन जति हेर्यो त्यति मन गल्थ मायन।

0: పతకం తిరుతానుదైన ఇంకు జ్యోతి సుంకై సంసార బుని జస్తై హంస సీతామాలాయ్.
1: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ज.
2: स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वासिलो ठाउँ, कोही कसैलाई रोग लागे कोखा अस्पताल जाऊ. सर्जन, फिजिसियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुटु, नाक, कान, घाटी, टाउको, गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन विधिबाट ऑपरेशन.

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दाङमा।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हात जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: सुगर थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
5: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसी द्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
6: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
7: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98-578-30-145, 98-478-30-153 र 98-49-41-944।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिफिन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियो

0: माया नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट माया नेट अब सब कनेक्टेड।
1: वरिष्ठ पाइल्स फिसर तथा फिस्टुला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह अब दाङगुराईको दिव्य फार्मेसीमा।
2: आधुनिक लेजर प्रविधि द्वारा उपचार र बिना चिरफार उपचार
3: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू पाइल्स फिसर फिस्टुला र पाइलोनाइडल साइनस को आधुनिक लेजर प्रविधिबाट बिना चिरफार उपचार
4: बिना टाका प्रभावकारी उपचार
2: दिशा गर्दा दुख्ने रगत आउने मासु पलाएको घाउ भएको पिप बग्ने चिलाउने कब्जियत एवं सम्पूर्ण रोगको सफल उपचार तथा परामर्श
4: शरीरको कुनै पनि भागमा मासु पलाएको अनावश्यक तथा मुसा कोटी आधुनिक मेसिनद्वारा हटाइन्छ
2: शल्यक्रियाको डर बिना सुरक्षित उपचार र तुरुन्तै डिस्चार्ज
4: नोट फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ बिरामी जाँच्ने मिति यही श्रावण 8 गते शुक्रबार
1: दिव्य फार्मेसी कोराई 15 सडक विभाग रोड सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-410 मोबाइल नम्बर 98-478-28913 98-478-26163 र 98-095-12-871।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिशियन हाड़ जोड़नी नसा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया बाल

0: Vianeto, buy one, get one free offer. Ma, 3 महिना को 125 Mbps internet. 2700 में खरीद कर दा. Free internet package. नया चरण को लागी gift करने मौका. सफल referral ma. आपको लागी 1 महिना free internet. Vianet, अब सब एक connected.
1: मध्य पश्चिम जांच्यक. यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ.

प्रकार को रसायन केमिकल मूल्य चाहिए शुद्ध और प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को दे स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का